0: Untuk sedikit kata pasar bar.
1: Ikan kelagi bisnis perusahaan. Hat bazar ma kreasi upas bikri kelagi jauhni kisamna bikri mulai kupas. Kisah tathah khasni buka bheja ragukhara lagait ka. Pasu mangsi bikri garne kisamna bikri mulai kupin प्रतिशत प्रोत्साहन रकम गांव पालिका ने उपलब्ध कराने सब साथ ही समर्थन मूल्य को समेत व्यवस्था गरेको छ।
2: इसपट को दशैं में बाहिरबाट मात्र होइन आफ्नै गांव का किसान ले उत्पादन गरेको वस्तु किनौ स्थानीय उत्पादन को प्रयोग बढ़ाऊ किसान लाई हौसला र आत्मनिर्भर कृषि तथा समृद्ध स्थानीय अर्थतंत्र निर्माण में हातेमालो गरौं।
1: मिति 2083 असोज 27 गते देखि 29 गते सम्म समय बिहान 10 बजे देखि बेलुकी 5 बजे सम्म
2: मर्सङ्गी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 खुदी स्थित कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र परिसर प्रबन्धक मर्सङ्गी गाउँपालिकाको कार्यालय भुलभुले लमजुङ आयोजक कृषि तथा पशु हाट बजार सञ्चालक समिति
1: थप जानकारीका लागि 9856450 र 9856493040

संकुरु नमस्ते खकाली किचन एंड बॉक्स बिस्ट्रो बेसी शहर नगर पालिका साथ मनांगे चौतारा संपर्क फोन नंबर 063-520-903 मोबाइल नंबर 98-461-80

भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारा प्रात स्मरणीय बेचीशहर नगरपालिका साथ भलुआटार निवासी बामदेव पौडेल को 73 वर्ष को उमेर में मिति 2083 साल असोज 14 गते बुधवार का दिन असामयिक निधन भएकोमा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण गर्दछौं। श्रीमती माया देवी पौडेल छोरा बुहारी विश्व पौडेल र रीता पौडेल छोरी ज्वाइँहरू इन्द्र सुवेदी र लवहरी सुवेदी शोभा अधिकारी र पदम अधिकारी प्रतीक्षा सुवेदी र सन्तोष सुवेदी नाति नातिनी बुहारी विशाल पौडेल र शीतल पौडेल नातिनी ज्वाइँ नाति अमृता अधिकारी र प्रकाश अधिकारी नातिहरू नयन आदित्य पवन नातिनीहरू आरजु अदिति पलातिनीहरू आर्य र आज्ञा भाउजू चीजा माया पौडेल दाजु भाउजू पदम प्रसाद पौडेल र हरिमाया पौडेल भाई बुहारी कृष्ण प्रसाद पौडेल र हरिमाया पौडेल यादव पौडेल र चीजा पौडेल खडानन्द पौडेल र देवी पौडेल एवं समस्त पौडेल परिवार बेसी शहर नगरपालिका साथ भलुवाटार लमजुङ।